जेन देखे किसाटव देखे अगले किसेन देखे लजमा वसेन सब मामिदान संगने अगपलाय सेन देखे अगले पुसेन देखे बलिजेन देखे जुरवाल मालिक मुजुरावाज मालिक सबाय जरतुन्दते सेन बुरियाल बगेन अनुबाय गया हूँ